सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया। मूर्ख सच न जाननी, मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, विच दुनिया।

कल मैं मेरा थरवन हुआ ना खुदाई लहो पहन नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तिर पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाव भगत करनी सदाए।

0: पाए चौकड़ मोलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गौर ब्राह्मण थे ओह मोआ ओ चढ़ पया बेतगा गया महला पहला
1: लक चोरिया लक जारिया लक कुड़िया लक गा लक ठगिया पहना मेरा दिन जिया ना।

हे वाहिगुरू, ये सारे जी जंत तुहाडे ही पैदा किए हुए ने और इन्हां नूं जिहड़े धंदियां दे विच कार विहार विच लगाया वह भी तुसीं आप ही लाया होया। पशु अपना कर्म कर रहा, पंछी अपना कर रहा, जानवर अपने रस्ते तुर रहा, कीट पतंगे अपने, मनुख अपने रस्ते तुर रहा, पर इन सारियां दे विचों दी भटक कौन गया? एक केवल मनुख। मनुख जिहड़ा सी मन दे तल ते भुल भी गया ते भटक भी गया, हुण जिहड़ा रस्ते तो कुराहे पै गया उनू दसन दी लोड़ हुंदी है कि तू गलत रस्ते पै गया। जिहड़ा सीधे रस्ते तुरिया जा रहा उनू थोड़ी आपां समझावांगे, उते चल ही सीधा रहा। जिहड़ा रस्ते तो भटक के कुराहे पै गया, दूजे रस्ते पै गया, पुठे रस्ते जिहनूं आपां कहिंदे आ, उनू सीधे रस्ते लियाउण दी लोड़ हुंदी है। जिहड़ा भुल गया उनू चेते करवाउण दी लोड़ है। और ये कुराहे कौन पै गया? और ये जिहड़ा भुल गया ये साडा मन है, ये मनुख दे तल ते असीं भटक रहे हैं, नहीं तो बाकी सब आपो अपने रस्ते तुर रहे हैं। इसलिए हे वाहिगुरु जी, सर्वे समाणा आप तू है, तू है, ये नहीं भी समा गया तो पहला अज भी है, कल भी है, वो सदी भी है। तुसी हर एक दे विच समाए हुए हो और उपाय धंधे लाइया सारियां नू पैदा करके उन्हां नू उन्हां दे धंधियां दे विच लाया होया है, भाव हर कोई उस रस्ते उते तुर रहा है। सतगुरु महाराज जी कहिंदे इस तरह उन्हूं महसूस करदे आ, उदा एहसास भी होना चाहिए ना, ताई अरदास उदी उदे अग्गे होएगी। जे उदा एहसास ही नहीं है सानू, जे उदी होंद दा ही नहीं पता, तो असी अरदास कित्थे करांगे। पहले सानू ये पता होवे कि वो सारी जिन्नी भी कुदरत है, ये सारी कुदरत दे विच वो कादर आप समाया, आप ही सारे जीआं नू पैदा करन वाला है। इस वास्ते वाहिगुरु जी सारियां नू तुसी धंदियां दे विच लगाउण वाले हो, करो दया मेरे ते भी अपनी, दया जिहड़ी है

महाराज ने कहा सुर नर नर आपां जे बाणी विचों दी समझांगे ते नर मन नूं कहा ये मन ही साडा नर है। कहिंदे ने नर तो नल सुर सुर कहिंदे देवते भाव दैवी गुण मन ने दैवी गुण लेने आ ना मन ते अवगुण कट्ठे करी बैठा इनू दैवी गुण चाहिए आ ते ओ गुण किने देने आ सतगुरु ने ते गुरु महाराज कहिंदे जिन्हें गुण लैने वो तो लैके आ तू शरीर करके आ रहा है मन तेरा किते तुरिया होया गुण मैं किनू देवां जोड़े शुभ गुण ने वो तो मन ने लैने आ मन बेचा सतगुर के पास तू मन दे गुरु साहब नू तेनू शुभ गुण दैवी गुण दया हुण मन कौन दिंदा मत्था ते टेक लैने आ पर मन दा मत्था कौन टेकदा है वी आलो महाराज आ मन पिया तुहाडे चरणां च जिन्हें मन अपना समर्पित कीता वाहिगुरु जी नू उहनां नू दैवी गुण मिल गए वह सुर नर हो गए वह सुगड़ ने सुजाण ने वह गा रहे ने ते ओ गा रहे ने जो तेरा मन भावे जिहड़े तेरे मन नू भा रहे ने जिहड़े तैनू चंगे लग रहे ने। सानू गुरु महाराज ने बाणी दित्ती है राग दे आधार ते रागां दी बाणी है ना और किन्ने कत्ती राग ने अगों रागणियां ने पर असी उस राग नू छड़ के होर पासे जदो तुर गए हां ते की होया साडा जिस धुन दे उत्ते शब्द चल रहा वह धुन तो मन च वस जाती है पर शब्द नहीं वसदा ये सच है धुन तो चल रही है हुण वह धुन जिदी है चेता तो उही आएगा ना फिर जिहड़े गाने की धुन होएगी वह गाना चेते आएगा जिहड़ा उत्थे नच टप रहा वह आएगा जां जिहड़ी फिल्म है वह चेते आएगी वाहिगुरु कित्थे चेते आया उत्थे गुरु नानक साहब चेते आ रहे हैं उत्थे सीन अगे अखां दे वाहिगुरु दा आ रहा है उत्थे ते उन्हां दा आ रहा है जिहदे वो धुन चल रही है फिर अंदर रस किदां बनेगा। राग दा दूजा नाम है प्रेम प्रेम विच्चों राग पैदा हुंदा है ते राग असीं जे छड़ता ते प्रेम कित्थों पैदा होएगा। सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने जिहड़े वाहिगुरु जी तुहानू सुर नर सुगड़ सुजाण गा रहे ने जो तेरे मन भावे जो तेरे मन नू पाउंदे आ असी उस ढंग दे नाल गाईए कि गुरु ग्रंथ साहिब नू चंगे लगीए असी तुहानू चंगे लग के बन के दिखा रहे हैं भी तुहानू चंगे लगना चाहिए गुरु नू भावे लगीए ना लगीए यही हुंदा ना भी सुनने वाले नू चंगा लगे ओ वाह वाह करे भी वाह क्या बात है किदां इन्हें गाया पर गुरु महाराज नू पुछो तुहानू मेरा गाउणा चंगा लगा कि नहीं जे तुहानू ही मेरा गाउणा चंगा नहीं लगा तो मेरा की फायदा। राम राय औरंगजेब दे दरबार दे विच भी तो गा ही रहा है पर की उहदा ओ गाउणा गुरु हर राय साहब जी नू चंगा लग रहा है ते जे गुरु हर राय साहब जी नालों ही नाता टुट गया ते की औरंगजेब बांह पकड़ के पार लंघा देगा नहीं लंघाएगा। जदों समझ आई उदों फिर पछतावा भी हुंदा है ते बेनती भी गुरु कलगीधर पातशाह अगे हुंदी है भी महाराज मैं भुल गया सी माया भी चमक देख के मैं औरंगजेब नूं खुश करदा करदा अपने पिता गुरदेव गुरु हर राय साहब जी नूं गवा बैठा गवा ही लिया ना किनू खुश कीता औरंगजेब नूं। असी तनाड लोकां नूं खुश करांगे ते फिर की होएगा एक नहीं खुशी मिलनी है जां तां गुरु दी लै लो ते जां फिर तनाड लोकां दी खुशी लै लो। गुरु दी खुशी नाल गुरु दी संगत भी दी खुशी है असी ओ गाइए जिहदे नाल गुरु महाराज खुश होण भावें वह विचार है ते भावें वह गाउणा है। असी दिखावा नहीं करना दुनिया नू दिखांदे रह गए पर सानू पार तां सतगुरु ने लंघाउणा है। बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया बार ते महाराज कहिंदे बाहां ते तू मैनू पकड़ाई नहीं क्योंकि तू सारी उम्र दुनिया नू दिखाउंदा रहा है ते हुण दुनिया नू कह तेरी बाह पकड़ के पार लंघा देण।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ, ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰ ਨਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣ ਗਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਗੜ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ

सुख पावन। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मनु सावी, नाम जिन कह मन उसे आम। वाजी शब्द कनेरे कह नानक, सच्चे साहिब क्या नाही करते रहम। साचा नाम मेरा अंधारो, सच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सपनाय सिया, जिन हिस्सा सब जाइया। सदा कुरबान किता उग्र बैठो, इस दियाँ वडियाइया, कह नानक सुनो संतोष उदरो, प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजी पंच सब तत्कर सुपा गए।

कुजन कुज नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हो आतित करन हदवाजे आनंद सुनो बड़ पागी हो।

नानक टेम खुजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु का खालसा, वाहे जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਦਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜੈਨੋ ਦੈਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ। ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ। ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪ੍ਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ। ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ, काहे मन पौ करया, उड़े उड़ आवे सकुंसां, तिस पाछे बचरे सरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में ही सिमरन करया, सब निधान दसे अष्ट सदान, ठाकुर कर तल त्रया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया, सब निदान दसे अष्ट सदान, ठाकुर कर तल त्रया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार, सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा, सब त्या वही सब त्या वही तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाणा, जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावहें हर त्यावहें तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जेना हर त्याया जी, तेना टूटी जमकी फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापहिं जपहिं बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत वले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े वरना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सृष्ट सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानुई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मिंडा साईं, जो जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुग वाया, तुदे आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझी माहे, तुझमें दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, वियोग मिल बिछुड़िया संयोगी मेल। जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुदमें दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखें जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरण है भैरे निवासा। पाणी पावक तिन्हें किया, पंकजो मोह पग नहीं चले। हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना। हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रवंत नानक तिनकी शरना। जैना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काय तेरे किते ना काम, मेरा साध संगत भज केवल नाम। श्रम जाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माहिया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहु नानक अम नीच करम्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाव पाई, हमरी क्रोहद रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो। आभाद मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबे रिनको आए संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखो मार तारी है। चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिर्यास्त जो करी हो रक्षा, रख लियो मोहे रखण हरे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कटगड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने, जाव उद करख करा कर तारा, प्रजा तर्त तब देहे अपारा, जब आ करख कर तुहूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सा ही ते रहित नरालम, जान तो वेद वेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, तका मूड़ उचारत पेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, तको कृपाहण अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत न भिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहों फूल राजा हवाए बैठा, कहों सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आजुग स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो बारे असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे अस तुझे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो ताकी ताप तनक मय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शहा शवय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा काल पांसते ताहे ओवारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दारिद्र दुष्ट दुख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सर ठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्वठ मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तर नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जाने ओ सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखन्या दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहिं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार महिंग की लाज अस गोविंदास तोहार। रामकली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ना पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला सुमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे करता तेरे सब किच है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे सच्चानाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जैनों भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन वसिया, जैनों इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दियां एह बड़ियाइया, कहे नानक सुनहो संतो, शब्द तरो पे आरो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंश तित घर सुभागे, घर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत वास कीते, काल कंटक मारिया, तोर करम पाया तुद जिनका, से राम हर के लागी, कह नानक तसुक होआ, तित घर अन्हाद बाजी, आनंद सुनहौ बड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाए आ, उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पाए सरसे, पूरे गुर ते जानी, सोनते पोनी, कहते पवित, सतगुर रहा पर उरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे आनहाद तूरे, सोनते पोनी, कहते पवित, सतगुर रहा पर उरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, मुंदामणि महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिया,

होई। मैं निर्गुण आरे को गुणे नाही, आपे तरस पायोई। तरस भया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरेया। तरस पया मेरा मत होई,

गुण हार तै पाया, रंग लाल बनाया, तिस बो किछ सुहंदा, जन नानक धन सुहागन साई, जिस संग

वाहे गुरु जी की फतेह। अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, शिव बिरंच तरतान नित्य जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर

मन इच्छत ही फल पावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहां।

अंतर्गत तेज पुंज तह लोग परगासे, देखत दर्श पटक प्रम पजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे, सेवक सिख सदा अत लोभत, आल

जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पात सा, मल जन्म जन्म दी कटी है, सजन सचा पात सा हो, सिर साहां दे साहो, जिस पास बैठिया सोही सब नांदा विसाहो, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। श्लोक महला तीजा, हस्ती सृजों अंकुश है, अहरन जो सरदेह

उभे सेव करे यों गुरुमुख अपने वारी सब राज सृष्ट काले नानक गुरुमुख बुझी

के हार जित तन पाई नानका से तन विचार ज्ञान अंगली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर मिले ता पाई और हिकमत हुकम खो।